0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: तू लव करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:06।
1: बॉलीवुड।

0: आखिर चार क्लासिक किशोर कुमार नंबर रीमिक्स इन दिस फिल्म जो किसी ने नहीं देखी है, तू या मैं नाम की फिल्म, हालांकि वो ओटीटी पे कब से आ गई है।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: आंखें चार का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी दो प्लस योर टू सो देन आंखें चार, आंखें तो चार कर रहे हैं सुबह सवेरे, जस्ट लाइक एवरी वीकडे मॉर्निंग 7 to 11, दिस इज द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग, इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, एंड इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। जब किसी नए महीने की शुरुआत होती है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज द फ्यूल प्राइसेस, एंड व्हाट आर द रिवाइज्ड फ्यूल प्राइसेस। द यूएई फ्यूल प्राइस कमेटी ने क्या अनाउंस किया, इन केस यू मिस्ड इट, देन सुपर 98 इज 3.6 दिरहम्स पर लीटर, स्पेशल 95 3.49 दिरहम्स पर लीटर, ई प्लस 91 3.41 पर लीटर, एंड डीजल इज 3.8 दिरहम्स पर लीटर। कमिंग अप टॉकिंग अबाउट द फ्यूल प्राइसेस, वन ऑफ माय फेवरेट ड्राइविंग सॉन्ग्स, लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप निकले हैं, ये वाला गाना इज वन ऑफ द बेस्ट एवर, मोहित चौहान की आवाज। सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। And आप जानते हैं, what is the one thing that you got to do in the first hour of the show, request for your favorite song. कौन सा वो गाना है जो नींद को कोसों दूर भगाता है, in case you have a recommendation, you can WhatsApp it to me, 054-309-1062, that's my number, 054-309-1062.
1: Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: Insurancemarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. Insurancemarket.ae.
9: Taqat ka tarkav with Dabur Shilajit.
10: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस।
9: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 7:25 ऑन द क्लॉक, डोंट गेट फूल्ड बाय द 34 डिग्री सेल्सियस दैट यू फाइंड आउटसाइड, इट्स गोइंग टू गो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस एज़ द एनसीएम इज प्रेडिक्टिंग। कल तो 47 तक का जाने वाला है एंड रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन द यूएई टिल द 6th ऑफ ऑगस्ट।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो देखो वहाँ क्या
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सेफ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड मॉर्निंग, 8:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this. Na de dil par desi nu tenne tadaruna.

0: 8:22 on the clock. अच्छा खासा वीकेंड गया, अब थोड़ी काम की बातें कर लें।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: All the parents out there, yeah, I mean, छुट्टियां तो आप लोग मना रहे हैं, but here's a quick look at the school admission update. Yeah, there's an update that's specially important. अगर आपका बच्चा is born between September and December, winter baby, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, सो लेट्स ट्राई एंड क्लियर दैट आउट. सो द यूएई हैज चेंज्ड द स्कूल एडमिशन एज का कट ऑफ फॉर स्कूल्स जो कि अगस्त और सितंबर में शुरू होती हैं. पहले क्या था, दैट दे रीच दैट एज बाय 31st ऑफ अक्टूबर, कट ऑफ एज 31st अगस्त तक रीच करनी थी, नॉट अक्टूबर. एंड नाउ एकेडमिक ईयर 26-27 से द कट ऑफ मूव्स टू द 31st ऑफ डिसंबर. सो 31st ऑफ अगस्त से चेंज होके 31st ऑफ डिसंबर का कट ऑफ हो गया है. सो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर सेप्टेम्बर टू डिसंबर के जो बेबीज हैं, जिन्हें पहले वेट करना पड़ता था एन एक्स्ट्रा ईयर. सो नाउ द एडवांटेज इज कि वो एक्स्ट्रा ईयर वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर सेप्टेम्बर टू डिसंबर बेबीज. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इट डजेंट ऑटोमेटिकली मीन दैट योर चाइल्ड मस्ट स्टार्ट अर्लियर. स्कूल्स कैन स्टिल लुक एट रेडीनेस and parents can decide what works best. So, for example, here's what the brass tacks is. For example, your child turns 3 anytime before 31st of December. Yeah? किसी भी साल में 31st of December से पहले, if your child turns 3, they may now be eligible for pre-KG or FS1 in that academic year. For example, my child is turning 3 next year before 31st of December. So, he's going to be eligible for pre-KG or FS1. In 2027, KG1 FS2 ke liye the child must turn 4 by 31st of December, and for KG2 or year 1, 5, and grade 1, grade 2, 6 by December 31, so on and so forth. So basically the rule has shifted from how old is your child when school starts to how old will your child be by the end of the year. So that is the rule that all of us parents must realize or must keep in mind. How old is your child when school starts? Nahin. इसकी जगह हाउ ओल्ड विल योर चाइल्ड बी बाय द एंड ऑफ द ईयर. फिलहाल बैक टू स्कूल का जुनून. एंड ऑन द मॉल्स यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग डील्स एंड स्कीम्स. आवारापन 2 से वे जुनून कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: बिग

0: बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
7: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
9: बिग ट्रैफिक अगर आपको चाहिए तो 611 जाना पड़ेगा. यहाँ पर सुबह से काफी ज्यादा ट्रैफिक अफरा तफरी है. ऑल द वे फ्रॉम मजेरा क्रॉसिंग थ्रू नसमा सेट बाहरिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स अल अवीर, यू फाइंड दैट एंटायर स्ट्रेच. यहाँ पर आपको 6 से 8 मिनट एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे. देन देयर इज S112 एज यूजुअल शारजा इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल 6 से शुरू होकर हेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट इन बोथ डायरेक्शंस, यू फाइंड ट्रैफिक बिल्डिंग अप ऑन S102 शारजा रिंग रोड. देन देयर इज बेरूत स्ट्रीट, डमास्कस स्ट्रीट, बगदाद स्ट्रीट का ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप. ऑल्सो 311 पर अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल इंडस्ट्रियल एरिया 15 यू ऑल्सो फाइंड कंजेशन हेडिंग नॉर्थ, एंड दिस इज राइट एज यू क्रॉस सिटी सेंटर मिर्दिफ. Heading north, there's been an incident being reported out there, so be ready for around 4 to 5 minutes ka delay. Iske alawa D75 par heading towards Dubai frame, and then also heading west in both directions, you'll find Sheikh Rashid Street par congestion building up. Then there's also a bit of traffic International City par phase 2 heading south, going toward Dubai Silicon Oasis on 311.
7: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: 8:45 dot on the clock. It is now time for the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: वो टाइम सुबह का जब बॉलीवुड का कीड़ा थोड़ा सा फुदकता है. आज एक क्या कहूँ मैं, बॉलीवुड बर्थडे कहना चाहता हूँ, बट नॉट रियली. दैट्स अ क्लू इन इट सेल्फ. ही इज नॉट डन टू मेनी सक्सेसफुल रोल्स इन बॉलीवुड, लेकिन जब वो बॉलीवुड के रोल करते हैं, देन ही डज इट लाइक नो वन एल्स. आज किस का बर्थडे है, दैट इज द क्वेश्चन. मैं एक सीन आपको सुनाता हूँ. इस सीन में तीन लोग हैं. सलमान खान है, इसमें कटरीना कैफ है, साथ में देर इज अ पर्सन थ्री. ओके, देर इज अ थर्ड गाय इन दिस सीन अलॉन्ग विद सलमान एंड कटरीना कैफ. कौन है ये? फिल्म का नाम भारत, और वॉज इट भरत? या इसको सुनिए, बताइए तीसरा बंदा कौन है,
2: क्या है?
3: कुमुद सर से मिलना था जी.
2: हम ही है कुमुद, बोलिए क्या काम है?
4: इसका मतलब ही कुमुद सर नहीं, कुमुद मैडम सर हुई.
3: सुना है अरब में तेल निकला है जी.
2: तो क्या सर पे लगाएंगे? तेल 3 साल पहले मिला था. सीधा पॉइंट पकड़ें.
3: उसी के लिए अर्जी देने आए हैं जी. तो
2: सीधा यही बोलो ना, इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो? नाम और उम्र बोलो.
3: सैयद विलायती सलीम यूसुफ अताल्ला खान.
5: सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, पूरे मोहल्ले का नहीं.
3: मेरा ही नाम है जी, आगे पीछे दादा परदा के नाम लगे हुए हैं ना.
5: वो भी जाएंगे तेल निकालने?
2: शॉर्ट में बोलो.
3: विलायती खान लिख लीजिए.
0: इस एक फिल्म में ही कटरीना कैफ को इतनी क्लिष्ट हिंदी बुलाई गई, भूमिका बांध रहे हो. या सो कटरीना कैफ सलमान खान के साथ में तीसरा बंदा कौन था, तीसरा कौन? दैट इज द क्वेश्चन. इफ यू नो आवाज से अगर आप पहचान गए हैं कौन थे, तो कॉल करो 800-1062. दैट्स माय नंबर 800-1062 पर. इफ यू गेट द आंसर करेक्ट, यू कैन वॉक अवे विद 2 ओपन मूवी टिकट्स. क्लू फॉर यू, ही इज नोन फॉर हिज अपीयरेंसेज इन अ वेरी वेरी पॉपुलर शो. एंड कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये नहीं होते तो वो पॉपुलर शो की पॉपुलैरिटी एटलीस्ट हाफ से कम हो जाती. दैट्स अ क्लू फॉर यू. इफ यू नो द आंसर 800-1062. आज किसका बर्थडे है? दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: नमस्ते,
5: ओला,
4: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
7: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
8: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:06।
1: बॉलीवुड।

0: वे यार, मजा आ गया आपसे बात करके ऑलरेडी.
1: थैंक यू.
0: ताकि यू कैन से द सेम फॉर मी, आई एम गोइंग टू गिव यू टू ओपन मूवी टिकट्स, बिकॉज आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. लास्ट टाइम एक सीन मैंने आपको सुनाया था ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड भरत भारत पता नहीं क्या, बट देयर वाज सलमान खान, देयर वाज कटरीना कैफ ट्राइंग टू टॉक इन प्योर हिंदी, एंड देयर वाज अ थर्ड पर्सन इन दैट सीन. और ये जो थर्ड पर्सन है, ऑल्दो इज नॉट डन टू मच ऑफ बॉलीवुड, लेकिन जब वो बॉलीवुड की नकल करते हैं, देयर इज नोबडी लाइक हिम. इट इज हिज बर्थडे टुडे. हु एम आई टॉकिंग अबाउट? Absolutely correct. Congratulations. ये दो open movie tickets आपके हो गए. दीपिका, enjoy yourself at the movies.
1: Thank you. Thank you so much.
0: Take care. Enjoy yourself. Bye.
1: Thank you. You have a good week ahead.
0: Bye bye. Take care. That is दीपिका, हमारी आज की विनर. Don't forget. रोज सुबह we play the big Bollywood quiz. It is Sunil Grover's birthday, Manish Paul's birthday, two stage legends का birthday on the same day. Do you believe in sun signs?

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: गुड मॉर्निंग, इज 9:14 ऑन द क्लॉक एंड द बिग न्यूज इज दैट टिल द 6th ऑफ ऑगस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी रेनी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द यूएई। दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड। राइट नाउ इट इज 38 डिग्रीज सेल्सियस, ह्यूमिडिटी एट 45%, विंड्स ब्लोइंग एट 18 किलोमीटर्स पर आवर, एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 40 किलोमीटर्स पर आवर इन सर्टेन एरियाज, मोस्टली सनी। Highs of 40 right now, lows of 35 degrees Celsius.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, यूं ही मैं वापस आऊंगा कहते रहते हैं लेकिन कभी आते नहीं है। फिर जसप्रीत बुमराह यार।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: एक बार फिर जसप्रीत बुमराह हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ सीरीज। टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 15 अगस्त, 15 अगस्त से 19 द फर्स्ट टेस्ट एंड द सेकंड ऑफ द टू मैच सीरीज 23rd to 27th of August, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। लेकिन शुरू होने से पहले ही नी घुटने का डिस्कम्फर्ट की वजह से जसप्रीत बुमराह हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द श्रीलंका टेस्ट। दैट व्हाट वी आर हियरिंग। एंड द अदर थिंग इज दैट इंडिया श्रीलंका का जो वार्म अप गेम था वो एक दिन से शॉर्टन कर दिया गया है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं हमें, उन्हें तो पड़ता है ना यार। 4 दिन से कम होकर 3 दिन का ही अब वार्म अप गेम खेला जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। सुनते हैं कि गौतम गंभीर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द क्रॉस हेज, ही इज अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। बट द बिग क्रिकेट न्यूज दैट केम आउट, द इमोशनल news that came out last week was the fact that Ajinkya Rahane, talking about test cricket, has announced his retirement from international cricket. He was quite teary-eyed as well. So all of us Ajinkya Rahane fans, agar aap curious hain meri tarah ki yaar itna khela banda India ke liye, he played 85 tests, 90 ODIs, 20 T20s, to पेंशन मिलता होगा कि BCCI की तरफ से? ही इज गोइंग टू गेट 70,000 इंडियन रुपीज पर मंथ का पेंशन। एंड बिकॉज ही इज प्लेड सो एक्सटेंसिवली, ही ऑल्सो कैप्टन इंडिया इन दैट मेमोरेबल सीरीज डाउन अंडर, केम बैक फ्रॉम दैट 36 ऑल आउट, ही फॉल्स अंडर द हाइएस्ट पेंशन ब्रैकेट। तो बंधु बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड।
2: फायर है तू,
3: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्प राज, अपने दम पे बनाए मैं नाम, काफी है पहचान की जरूरत नहीं है।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
8: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
7: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
8: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
7: चलो चले अलराज।
9: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।
10: अपनी

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:08।
1: Bollywood.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It is 10:11 on the clock. And कभी आपने सोचा कि यार ये इतने सारे bots, इतने टेस्ट भी होते रहते हैं, कि you got to prove that you are human and all of that, इस चक्कर में इतना डर क्यों है? Is it the bots की population क्या होगी? Now it is absolutely official. Bots officially now outnumber human beings online. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि automated AI bots now generate 57.4% of global web traffic. Yeah, so web traffic aa raha hai, so there is more chance that it is being generated by a bot than it is by a human for the first time in history. Global web traffic mein officially it has surpassed human users at 42.6%. And ye Cloudflare ka data hai, confirmed by their CEO. And AI के ट्रेनिंग क्रॉलर्स हैं, ऑटोनोमस एजेंट्स हैं जो ब्राउज करते हैं, कंपेयर करते हैं, एंड दे इवन कंप्लीट ट्रांजैक्शंस

डेटा है कन्फर्म बाय देयर सीईओ एंड या आई मीन एआई के ट्रेनिंग क्रॉलर्स हैं, ऑटोनोमस एजेंट्स हैं जो ब्राउज करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड दे इवन कंप्लीट ट्रांजैक्शंस विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्व. यहाँ आप और मैं डर रहे हैं कि कहाँ यार कितना इन्फॉर्मेशन दें कितना नहीं दें, वहाँ पर बॉट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड ह्यूमन पॉपुलेशन. जस्ट टेक अ सेकंड टू काइंड ऑफ रैप योर हेड अराउंड दैट इन्फॉर्मेशन. या इफ आई वर टू आस्क यू कि बॉट्स ज़्यादा हैं या इंसान, आपका पहला जवाब क्या होता? कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल, मैं वारी जावा धुरंधर द रिवेंज से. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Rajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
1: Mugambo. खुश हुआ
2: कर रहे हो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
3: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
2: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
3: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
2: तो ये तो यहाँ आके change हुआ होगा आपका thought process.
3: Definitely.
2: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है सही है खा ले कुछ नहीं होगा.
3: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है
2: I know. मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
3: ना इम्यूनिटी का राज वही है
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Good morning, it's 10:25 on the clock, and let's take a look at that unusual traffic. Good news, yaar. Ab wo bilkul hi clear ho chuka hai. There was some northbound traffic around city center Mirzapur, lekin now it is smooth flowing heading north. Heading south, you will find that usual congestion 311 going towards Dubai from Sharjah. Also, bit of congestion D62 Beirut Street per then S112 in both directions, east and west. Ye to usual hotspots hi hain. Nothing surprising except a bit of congestion you'll find D62 per after Nadal Hamar and going towards Nadal Shiba 2. यहाँ पर आपको मिलेगी 4 से 5 मिनट की देर अराउंड रसल खोर इंडस्ट्रियल एरिया 2.
0: सिया सेल्फ ड्राइव्स न्यू AI असिस्टेंट हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स विजिट selfdrive.ae
5: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: वो जो टर्नटेबल्स होते हैं ना, जो रिकॉर्ड्स होते हैं या म्यूजिक रिकॉर्ड्स को आप क्या कहते हो, विनाइल बोलते हो कि वाइनल बोलते हो?
0: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: आई मीन टेल मी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू यूज्ड टू कॉल इट विनाइल, राइट? जस्ट लाइक मी राइमिंग विद पोछे वाला फिनाइल, बट देन समबडी सेड इट्स नॉट विनाइल, इट्स वाइनल. या जो भी वाइनल या विनाइल, इट इज यू नो बैक इन फैशन, ही तो आपने सुना होगा. बट देयर इज समथिंग एल्स दैट जेन ज़ी आर ब्रिंगिंग. एंड Gen Z आजकल इतना सरप्राइज कर रहे हैं ना हम लोग को, इट्स क्वाइट क्रेजी है. बिकॉज गेस व्हाट Gen Z आर ब्रिंगिंग बैक आफ्टर द रिटर्न ऑफ द वॉकमैन, आफ्टर द रिटर्न ऑफ द वाइनल, नाउ CDs आर बैक इन फैशन. यार कैन यू इमेजिन? हाँ, मतलब CD ROM, रिमेंबर वो जैकेट वाला CD. CD सेल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर 2026 हैज गॉन अप बाय 16% से, रीचिंग 16.3 मिलियन यूनिट्स. 16.3 मिलियन यूनिट्स हैव बीन सोल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. एंड जो वाइनल उर्फ विनाइल है, दैट इज ओनली ग्रोन बाय 2.4%. सो कह रहे हैं वो, द लॉजिक इज दैट द रिवाइवल इज इन जस्ट अबाउट लिसनिंग टू म्यूजिक. जो यंग फैंस हैं, Gen Z है, दे आर इनटू कलेक्टिंग फिजिकल एल्बम्स फॉर द आर्ट वर्क, पैकेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग. वरना बड़ा बोरिंग सा है ना कि मतलब कहीं से भी आप डाउनलोड कर दो, इट्स सिट्स इन सम सिस्टम दैट यू कैनॉट रियली शो ऑफ, राइट? सो एंड इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ एडिंग टू द डेकोर ऑफ द हाउस, काइंड ऑफ शोइंग ऑफ योर म्यूजिक टेस्ट. तो ये आप कैसे करोगे डिजिटल कॉपी? सो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए CDs आर बैक इन फैशन. I think we'll do a poll question about this on our Insta 106.2 Big FM. Would you buy a CD in today's time? This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ताकत की कमी होना और कमजोरी फील करना इज कॉमन. स्ट्रेस, फास्ट फूड एंड अ फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल कैन मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी. हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
2: यू आर जस्ट वन call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: Good morning, it is 10:41 on the clock. Let's take a look sabse pehle at the capital, Abu Dhabi. Everything seems to be smooth flowing. Halka bulka traffic, Mafraq Industrial going towards Banias on 11 heading north. Then chalte hain E11 further north, Ghantoot ke aaspaas. There's been an incident and this is going north. Some roadworks are going on over there. So in case you have more info about this naya traffic situation, give me a call 800-1062 par. Chalte hain further north, heading south, going towards Dubai from Sharjah. At both these arteries, 311 and E11, you'll find around 5 to 7 minutes ka delay. Achanak a bit of congestion, Ajman Industrial 2 se nikal ke going towards E88 as well. In case you spot something, and if it's safe to call, call me on 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिम सिम ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। The Big Binge with Sid. Play दबाओ, confusion हटाओ.
0: The Big Binge with Sid. Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ ना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 1:05।
1: बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: ऑलराइट, द वेदर इज अ बिग टॉकिंग पॉइंट दीस डेज, एंड 6 तारीख तक, ऑगस्ट 6 तक यू कैन एक्सपेक्ट रेनफॉल सेवरल एरियाज इन द यूएई। या आई मीन क्लाउडी पार्टली सनी राइट नाउ, इट्स 40 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 45 डिग्रीज सेल्सियस टुडे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae. Insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड ऑल द वे टिल 5 o'clock. आजकल आप सिर्फ सुबह नहीं दोपहर को भी मेरी आवाज़ सुनते हैं. हम लोग किस बारे में बात करते हैं? इट इज लंच टाइम ऑलमोस्ट, और हैव यू ऑलरेडी हैड लंच? आई वन ऑफ दोस पीपल हु यू हैव अ अर्ली लंच? आई मीन, इज देयर अ रूल व्हेन इट कम्स टू लंच एट योर वर्क प्लेस? फिक्स टाइमिंग कुछ होता है? और अगर फिक्स टाइमिंग है तो उससे पहले भूख लगेगी तो क्या? आई एम वेरी वेरी क्यूरियस बिकॉज दिस काइंड ऑफ न्यू फॉर मी. सेकेंड वीक इन टू मी डूइंग द बिग मिक्स. But yeah, we're going to talk about, as always, Bollywood mein kya ho raha hai. That's our favorite topic when it comes to afternoon. Pata nahi kyun Bollywood ka keeda jaag jata hai. So expect a lot of film news, OTT news. In case you have something to share with me, let me know. How was your weekend? You can always WhatsApp me 054-309-1062. That's the number, 054-309-1062. Keep it locked to the Big Mix with me, Sid. Good afternoon. Yo, yo.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning. Come on. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
1: Mogembo! खुश हुआ
2: अरे वो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
3: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
2: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
3: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
2: तो ये तो यहाँ आके change हुआ होगा आपका thought process.
3: Definitely.
2: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है सही है खा ले कुछ नहीं होगा.
3: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है
2: I know. मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
3: राज इम्यूनिटी का राज वही है
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: No major concerns traffic-wise on the roads out there. Halka-bulka southbound traffic abhi bhi aapko milne wala hai Alkhel Road par as you head towards Business Bay from D3. A bit of southbound traffic at Alnada Interchange 1 as well. E11 ki main baat kar raha hu. And at the junction of 44 and 311 at JBT also, achanak thoda bahut congestion aapko milega. In case you spot something, give me a call 800-1062 par.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Golf Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is the Big Mix with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And Dhamaal 4 just refuses to leave the box office. Yaar, kya hai aapki analysis on this? It's one of those pieces of news jo ki pehli do teen baar jab aayi to I was like, chalo theek hai. बढ़ रहा है बॉक्स ऑफिस, बढ़ने दो, वेरी गुड, वेल प्लेड माय बॉयज, बट इट जस्ट कीप्स गोइंग अप एंड अप यार. बॉक्स ऑफिस पे धमाल 4 स्टिल हैंगिंग अराउंड लाइक दैट फ्रेंड हू सेज के लास्ट चाहे बस मैं एक लास्ट, लेकिन वो कभी जाते ही नहीं. अजय देवगन लेड कॉमेडी कंटिन्यू टू होल्ड ऑन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन या हॉलीवुड टाइटल्स से भी. डिस्पाइट अ सर्टन क्रिस्टोफर नोलन एंड ऑडिसी रिलीजिंग, धमाल 4 इज स्टिल डूइंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस. वीकेंड पे जंप इन कलेक्शन भी नोट किया. Critics may be divided, but who cares about the critics when it comes to films like Dhamaal 4, right? I mean, family audiences, dimaag ghar pe chodo aur fir film dekhne jao, Bollywood slapstick silly comedies, familiar faces, that is still the most sure shot formula for success. I mean, it's very difficult to kind of crack a film in that formula. Lekin jab wo crack ho jati hai, jab audience ko pasand aati hai, to bhai matlab chappar phaad business. Dhamaal 4 is that. One of those films that kind of tried to be in that zone was Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Let's listen to the title track. Lekin it's a film that's already out on OTT. It's on Z5. This is The Big Mix with me, Sid. Good afternoon.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: This is the Big Mix with me, Sid, and the big topic in Bollywood today is Shah Rukh Khan ke baal. हाँ मतलब इट्स अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट कि ये किंग नाम की फिल्म जो शाहरुख खान कर रहे हैं ये कर तो रहे हैं लेकिन इसके अंदर क्या होने वाला है शाहरुख खान इज ही गोइंग टू बी एन एजिंग यू नो एक्शन स्टार इन दिस लॉट्स ऑफ न्यूज कमिंग इन फ्रॉम लॉट्स ऑफ रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज लेकिन आज बॉलीवुड डिटेक्टिव केस बन चुका है शाहरुख खान के बाल बिकॉज लंडन में ही वाज स्पॉटेड विद फैमिली ट्राइंग टू कवर व्हाट लुक्स लाइक न्यूली ब्लीच्ड हेयर नए नए ब्लीच करके हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करके शाहरुख खान बाहर सड़कों पे निकल गए रिपोर्टेडली फॉर हिज अपकमिंग फिल्म किंग एंड ऑब्वियसली हम तो बॉलीवुड फैन है शाहरुख खान के फैन है सो वी डिडंट मिस अ पिक्सेल एंड द बज इज दैट द ये जो किंग है इट मे फीचर शाहरुख इन अ ग्रेयर एजियर एक्शन थ्रिलर लुक इससे पहले कि एक टीजर रिलीज हो जाए एक छुपा हुआ हेयर स्टाइल इज बिकम द टॉपिक ऑफ अ फुल नेशनल इन्वेस्टिगेशन दैट्स व्हाट इज मेड डिटेक्टिव्स आउट ऑफ ऑल बॉलीवुड फैंस टुडे एंड सिर्फ शाहरुख खान कैन कवर इज हेयर एंड स्टिल मेक हेडलाइंस राइट मतलब बाल तो छुपा लिए लेकिन इस चक्कर में एक पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर लिया ओनली शाहरुख खान कैन डू दैट दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड गुड आफ्टरनून

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: Roof Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिट ऑल द वे टिल 5 o'clock. देखो क्या है ना कि ऑल द वे टिल दिवाली वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड बिफोर एवरीथिंग एल्स एंड दैट इज रामायण. कभी ट्रेलर, कभी टीजर, कभी म्यूजिक, कभी ये कभी वो. आज का टॉपिक क्या है व्हेन इट कम्स टू दैट मैग्नम ओपस टू बी इज द फैक्ट कि यार रामायण में पैसे तो खर्च हो गए. एंड बाय द वे करेक्शन, मुझे लगता था 2000 crore, इट्स एक्चुअली 4000 crore दैट इज बीन स्पेंट ऑन रामायण. लेकिन ट्रेलर रिएक्शंस तो अभी भी आ रहे हैं, दे स्टिल इनकमिंग. लेकिन उसके बाद द इंटरनेट इज कम्प्लीटली मूव टू बॉलीवुड अकाउंटिंग. इट्स मेड एन अकाउंटेंट आउट ऑफ एवरीबडी क्योंकि नए नए रिपोर्ट जो हैं, ताज़ा तरीन खबरें के हिसाब से रणबीर कपूर, ऑफकोर्स नो सरप्राइज इज देयर, ही इज द हाइएस्ट पेड एक्टर इन नितेश तिवारीज एपिक. There's also chatter around Yash, Sai Pallavi, Sunny Papa ji. Inko kitne paise mil rahe hain? Sunny Papa ji is not a part of the trailer, which has disappointed everybody. Film already is being discussed as one of Indian cinema's biggest scale projects. Massive budget, 4000 crore. Do part ka release plan, pan India casting. Basically, trailer ne create kiya emotion. Aur ab jo fee reports hain, they've created an entire Excel sheet. So, मतलब सारे के सारे suite, यानी कि PowerPoint, Excel, Word, सब कुछ use करके हम लोग बात कर रहे हैं रामायण के बारे में. Really cannot wait for that. Yeah, मतलब bouquets, brickbats, whatever you think about the trailer. If you're all in agreement, is the fact that इस बार दिवाली का इंतजार सिर्फ पटाखे और ताश के लिए नहीं है. It is also for रामायण. Yeah. Keep it locked. This is the Big Mix with me, Sid, right here on Big 106.2. We are the beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Good afternoon. हमारी ही तरह अंगड़ाइयां मारता हुआ लंच ब्रेक के बाद ट्रैफिक भी सड़कों पे जमा होना शुरू हो चुका है एट द यूजुअल हॉटस्पॉट्स 311 E11 हेडिंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई अबिर ऑफ कंजेशन अलनादा इंटरचेंज वन पर आपको मिलेगा हेडिंग नॉर्थ देन देयर इज अबिर ऑफ साउथ बाउंड ट्रैफिक एज वेल E44 अलखेल रोड पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे एंड फर्दर डाउन टुवर्ड्स अलकूज 4 आल्सो यू विल फाइंड अबिर ऑफ कंजेशन इन केस यू स्पॉट समथिंग एंड इफ इट्स सेफ टू कॉल मी ऑन 800-1062
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 6.2

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड आफ्टरनून, 3:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मुमकिन।
1: देखो हर एक साउंड ट्रैक में एक पर्टिकुलर सुपर हिट होता है, एक दो होते हैं गाने जो कि हिट हो जाते हैं, बट हर एक गाना सुपर हिट, ये तो आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम दैट इट हैपेंड। मे बी नदीम श्रवण के टाइम पे हुआ होगा तो हुआ होगा, बट या दैट्स हैपेंड एंड टैपिंग इन टू दिस क्यूरियोसिटी इज शेखर सुमन विद शो शेखर टुनाइट। एंड यू नो वॉट, शुरुआत से ही हिटिंग आउट ऑफ द पार्क, दिस इज हाउ शाश्वत, हु इज लाइक अ ट्रेंड सिंगर इज वेल, दिस इज हाउ ही स्टार्टेड ऑफ हिज परफॉर्मेंस।

क्या बात है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, मेसमराइजिंग. ये देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो टैलेंट का भरमार है, ये कौन है. द स्टोरीज बिहाइंड ऑल द सुपर हिट सॉन्ग्स एज वेल, आई मीन कांट गेट इनफ ऑफ दिस गाय. एंड लाइक शेखर सुमन हिमसेल्फ सेड दैट यू कांट वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट ही इज कंपोजिंग. अ ट्रेंड सिंगर. ये जो आवाज़ आपने सुनी, इट इज Shashwat himself singing, playing the piano. So prepare to get mesmerized in episode 12 of Shekhar Tonight. This is The Big Mix with me, Sid, on Big 106.2. Good afternoon.

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Listen to her every day.
7: Mugembo! खुश हुआ
8: अरे वो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
9: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
8: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
9: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
8: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आपका thought process.
9: Definitely.
8: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है सही है खा ले कुछ नहीं होगा
9: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है
8: I know. मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
9: इम्यूनिटी का राज वही है
6: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
6: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: Good afternoon. It's on an average 42 degrees Celsius across the UAE, expected to go up to 45 degrees. And the big news is that till the 6th of August, expect intermittent rain all across the UAE.
6: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 but this is the Big Mix. So with me sit all the way till 5 PM every weekday right here on Big. But ek फीचर जो मैं करता हूँ ऑन इंस्टाग्राम दैट इज कॉल्ड सिडकॉम. अगर आपने अभी तक कैच नहीं किया, दिस वीक वी स्पोक अबाउट 1:40 की लास्ट लोकल, वन ऑफ दोज अंडर अप्रिशिएटेड डार्क कॉमेडीज. अभय देओल, नेहा धूपिया, व्हाट आर द रीजंस दैट यू शुड वॉच सम यू नो यूजफुल एंड यूजलेस ट्रिविया ऑल्सो. डोंट फॉरगेट एवरी संडे वी कैन ऑफ एयर एन एपिसोड. बट टॉकिंग अबाउट माई कॉमेडी रिकमेंडेशन, एक और फिल्म दैट सेलिब्रेट्स इट्स बर्थडे टूडे. आज 3rd of August इट टर्न्स 8 years old. 8 साल पहले एक इरफान खान की हिडन जेम रिलीज्ड, इट्स कॉल्ड कारवान. देखिए आपने, दुलकर सलमान इसके अंदर है, मिथिला पालकर. इट्स वन ऑफ दोज वेरी जेंटल रोड ट्रिप फिल्म्स जो कि इट डजंट स्क्रीम फॉर अटेंशन राइट, बट देखने के काफ़ी दिनों तक इट काइंड ऑफ स्टेज विद यू बिकॉज फिल्म का जो थीम है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है. सो दैट फिल्म दैट गॉट ह्यूमर, ग्रीफ, awkward moments as well, quiet healing hai, and Irfan Khan can do only Irfan Khan can do certain things, and is film mein aapko bahut sare aise moments milenge. So there's one thing, if there's one film that you want to watch over the weekend, I think I'm going to add that in my list of sitcom as well. Ispe ek pura ka pura special to banta hai. It's a perfect hidden gem recommendation. Agar kuch calm heartfelt aapko chahiye, bahut sare log Musafir Cafe ko pasand kar rahe hain, iske bare mein aur baat karne wale hain. That was the special of the Big Binge this weekend. So Musafir Cafe ke bare mein people can't stop tarif karoing. Iske bare mein more coming up in just a while. This is the Big Mix with me, Sid.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 4:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून, इट इज ऑन एन एवरेज 42 डिग्रीज सेल्सियस अक्रॉस द यूएई। आपने सुना कि नहीं, 6th ऑफ अगस्त तक यू कैन एक्सपेक्ट स्कैटर्ड रेनफॉल ऑल अक्रॉस द कंट्री। राइट नाउ ह्यूमिडिटी एट 60-65%।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

Big 106.2, but this is the Big Mix. With me, Sid, all the way till 5 PM. And you know what the problem with Christopher Nolan ki Odyssey is? The fact that wo IMAX mein shoot ki gayi. And now, agar dekhna hai to bhai IMAX mein dekhunga aur na nahi dekhunga wali baat hogi, jiski wajah se abhi tak main dekh hi nahi paya hoon. Yaar, I've got so many reviews, all of them positive. Ek to Nolan bhai saab ki chakkar yehi hai na ki थोड़ा तो मिक्स रिव्यू होना चाहिए ना यार. अब एवरी टाइम ओनली पॉजिटिव रिव्यूज, तो देन दैट प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस इज इवन हायर ऑन द ऑडियंस के यार जल्दी टिकट बुक करो यार, अभी तक ऑडिसी नहीं देखी और तू कौन होता है यार फिल्म की रिकमेंडेशन. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट वेरी सून आई एम गोना टेल यू व्हाट आई टेल ऑल माय फ्रेंड्स. बहुत जल्द मैं देखने वाला हूँ क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी. एक और फिल्म दैट आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इज जन नायगन. अब देखो क्या है ना कि बिकॉज ऑफ OTT लैंग्वेज नो बार वाली सिचुएशन हो गई है. इट डजेंट हैव टू बी लाइक ओनली अ हिंदी फिल्म राइट फॉर अस टू एंजॉय इट. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए बस. और इसी कैटेगरी में है विजय, सुपरस्टार विजय की फिल्म जन नायगन एंड क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ बॉक्स ऑफिस चैटर. एंड दैट इज के 300 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है. इन केस यू हैव सीन जन नायगन दिस फिल्म, देन सेंड मी लाइक अ 2-3 वर्ड रिव्यू ऑन आर व्हाट्सएप 0543091062. दैट 0543091062. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुलाहट, झुबुदाई, झुबिलाई।
2: Beat 106.2, the beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: दिस इज द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
3: insurancemarket.ae.
4: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: Missed your morning buzz?
5: उठा ले रे बाबा.
0: Yes, sir.
6: I'm in procurement and logistics. Thanks to the world का जो भी scene चल रहा है, सब चीजें late हो रही है. रोज गाली खाते हैं और अचानक से 4 महीने बाद 4 कंटेनर आ जाते हैं तो वेयरहाउस बढ़ जाता है. तो हम तो रोज ही झगड़े और गाली को लॉन्च कर रहे हैं.
7: क्या बात है. वायरस से डर नहीं लगता साहब, कंटेनर से डर लगता है.
6: आई स्वेयर, मैं अभी भी जाके झगड़ा करूंगी कंटेनर के लिए आपके फोन के बाद.
7: The silver lining to all of your, you know, container wale is that aaj Anisha ki awaaz thodi si nasaaz hai and that is why jab wo chillayegi to usually jo effect hota hai wo nahi hoga because thodi tabiyat kharab hai Anisha. So
6: yes, that is for sure. Nahi to bechare roz daat khate mujhse.
7: Anisha, matlab bahut dar lag raha hai mere ko yaar, bahut hi dar lag raha hai aapse mere.
6: क्योंकि मुझे मेरी लेबनीज बॉस से डर लगता है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Good afternoon. Usual suspects traffic wise aapko milne wale heading north going towards Sharjah from Dubai at E11 and 311. Both these arteries you'll find at least 5 to 6 minutes ki there. So be careful. Also Sheikh Zayed Road par traffic jama hona shuru ho gaya hai. Dubai Media City going towards Om Sikkim as well. यहाँ पर भी 4 to 5 minutes की देर आपको मिलने वाली है. द जंक्शन ऑफ 44-311 ऑल्सो अबिट बिजी JVT पे जो मेरा विलेज ट्राइंगल पर आपको मिलेगी 5 to 6 minutes की देर. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit.
2: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है. डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस.
1: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग 106.2. दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी द टाइम राइट नाउ 5:09।
1: Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Sia Self Drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
4: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत। मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: It's showing 37 degrees. आप गाड़ी में मुझे बताओ क्या टेम्परेचर दिख रहा है। फिलहाल गूगल पे 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 35. काफी ह्यूमिड टुडे, फिलहाल ह्यूमिडिटी 69% पर।
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: मंडे के बारे में अगर मैं बात करूं, एक ही चीज थ्रिलिंग है कि मंडे की शाम हो गई है, आप घर जा रहे हैं एंड फिर से कल से हम उल्टी गिनती फॉर द वीकेंड शुरू करेंगे. बट व्हाइल यू ड्राइव बैक होम, यहां पे हम माहौल बनाते हैं, अपनी महफिल सजाते हैं विद द कारियोकी.
1: कारियोकी
2: द ओनली प्लेटफॉर्म जो बाथरूम सिंगर्स को यहाँ पे बुला के मोटिवेट करता है कि आप बाथरूम से बाहर आइए, गाना गाइए. गाना आए या ना आए, बस गाना अगर आपको अच्छा लगता है तो दिस इज इट. एवरी इवनिंग मैं आपको एक ट्रैक सुनाती हूँ, अगर आप ट्रैक पहचान लेते हैं, यू कैन गिव मी अ कॉल एंड वी कैन कारियोकी टुगेदर 800-1062 पर. ऑलराइट आशा, अगेन अ गाना फ्रॉम द 90s.

अब गाना अगर आपने पहचाना है, थोड़ा टफ है ये, तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. एंड क्रॉस, डोंट वरी अबाउट योर सिंगिंग स्किल्स, ऑडियंस मेरी, तालियां भी मेरी, आप बस गाना गाओ. 800-1062 पर इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी.

0: 92.2.
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Don't miss your chance to get a big cash win with Bank Ticket.
8: A guaranteed 15 million dirham grand prize.
7: Plus 5 consolation prizes of 100,000 dirhams each.
8: And with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirham.
7: Don't forget the 4 weekly cash e-draws of 25,000 dirham.
8: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
10: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
3: ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae। अगर गाड़ियां बोलती तो मंडे शाम यही हाल होता। ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, फिलहाल इट्स शोइंग अ 33 मिनट डिले। इट इज काइंड ऑफ पैक्ड। आई एम मर्डिव टू मोहेसना। दिस हैवी ट्रैफिक। अगर आप इस वक्त हैं नियर रसलखोर इंडस्ट्रियल एरिया, उमरमूल्ड बाय फेस्टिवल सिटी, ऑल्सो शेख जायद एट द मोमेंट अ 22 मिनट डिले। दिस ट्रैफिक विच इज मूविंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल, करामा मनकूल उद मेहता साइड, एंड हैवी ट्रैफिक मरीना से JBR। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
11: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
12: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
11: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, बिग थ्रिल है. मैं हूं मानसी एंड हर शाम 5 से 6 हम जरा माहौल बनाते हैं, रिलैक्स करते हैं, गाने वाने गाते हैं. वी गॉट सचिन विद अस. हाय सचिन.
2: हाय मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. कैसा रहा मंडे? मन लगा आपका?
2: मंडे अच्छा रहा, मन लगा.
1: यही है जिंदगी, वीकेंड टू वीकेंड ही जी रहा है हर कोई फिलहाल. अभी अभी मैंने एक शो देखा है, उसमें कहा है कि मंडे को जिंदगी नहीं जीते हैं क्या, तो मंडे को जिंदगी जीना हमें शुरू करना चाहिए. मैं मुसाफिर कैफे कोट कर रही हूँ, देखा आपने?
2: नहीं, अभी देखा नहीं.
1: देखो देखो,
2: हाँ,
1: वो मंडे को जिंदगी जीना सिखाएगा आपको. फिलहाल सचिन क्या करते हो आप?
2: बैंकर.
1: अरे वेरी नाइस, अ बैंकर हु इज अ सिंगर. आई एम सो एक्साइटेड. तो गाने गाने का शौक 100%? मतलब यहाँ पे कौन सा हम कोई रियलिटी शो है? गाओ आप तालियां तो मेरे हाथ में, बटन बजाऊंगी तालियां बजेंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. फिलहाल लेट्स सी मिस्टर बैंकर आज शाम कैरियोके में क्या कमाल करते हैं.
0: कैरियोके.
1: हाँ जी सर.
2: सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं. राइट?
1: वेरी राइट. आगे गाओ.
2: सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं.
1: ओए होए, खाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको. कितने टाइम बाद आप ये गाना सुन रहे हो और गा रहे हो? पहली बार याद है आपको? फर्स्ट टाइम किसके लिए ये गाना आपने अपने दिल में डेडिकेट किया था? सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं,
2: वो दिल में रहने दो आप.
1: जितने लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो 90% लोगों का पहला प्यार ना हासिल सा रहता है. आप देखो मुसाफिर कैफे, आपको मजा आएगा. हाइपोथेटिकली अगर आ जाए वो कभी आपके सामने इतने सालों बाद, तो फिर
2: देखेंगे. पुरानी यादें ताजा होंगी. और क्या
1: है घर में? बीवी?
2: 100%
1: हाँ. तो फिर मत करना ज्यादा ताजा, वरना आगे क्या होगा आपको खुद पता है. सचिन नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल. थोड़ा सा मतलब प्यार जो है वो सुर से बाहर हो गया था, बट आपने गाना बड़ा अच्छा गाया. हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू.
1: बाय सचिन. बाय. दिस इज व्हाट वी डू एवरी इवनिंग. वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्रोफेशनल सिंगर्स, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु लव टू सिंग. सो इफ यू लव टू सिंग, यू नो दिस गाना जो सचिन ने ऑलरेडी बता दिया है, आप भी गाना चाहते हैं, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: Karaoke. Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: फिलहाल आप अपना गला साफ कर रहे हैं फॉर द कैरियोकी. वी गॉट सम म्यूजिक कमिंग योर वे इन जस्ट अ बिट.
2: ढेड़ा नशा नशा तेरी अखा विचो आवे मनु.
1: मुझे लगता है कैरियोकी ना मैंने अपने लिए शुरू करा है क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है गाना गाने में. मैं कहती हूँ ना, गाना आए या ना आए, अगर आपको गाने में मजा आता है, दिस इज फॉर यू. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
2: जिन्नी सोनी लगदी है मनु किसे होर नाल.
1: Coming up right here on Big 106.2, मैं हूँ मानसी, keeping you company until 9. This is the Big Thrill.
0: Big 106.2.

0: आपकी जीत डाबर शीला जीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
1: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: हैवी ट्रैफिक वर्का से मर्डिफ आगे मोहेसना फिलहाल 35 मिनट डिलेड इज पैक्ड. हाँ सिटी सेंटर मर्डिफ से अगर आप आगे जा रहे हैं बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है. दिस ट्रैफिक इस वक्त नियर दुबई फेस्टिवल सिटी. हैवी ट्रैफिक अगर आप नादुल हमर के आसपास हैं रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक ट्रेलिंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल अराउंड करामा मनखूल अनूद मेहता साइड बहुत ही स्लो मूविंग ऑन द जुमेरा रोड शेख जायद पे फिलहाल 32 मिनट डिले. अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया इज पैक्ड एट द मोमेंट एंड देर इज ट्रैफिक ऑन द हेस स्ट्रीट गोइंग टू वर्ड सर्कल मॉल. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: Pesham, here I go. छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल.
2: Big 106.2 The Beat.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Manvi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, Mansi. And Monday को मन लगाने के लिए घर जाते जाते अगर ट्रैफिक मिलता है हम करते हैं कारियोकी. असली शिद्दत कारियोकी की दिखाई है विकी ने शेख जायद पे. ये जो है ये ब्लूटूथ से हटा के मुझसे बात कर रहे हैं. बहुत गलत बात है ये. इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस.
2: अब क्या ही कर सकते हैं भाई.
1: पकड़े जाओगे तो फाइन लगेगा.
2: 800 तो फाइन और 6 ब्लैक पॉइंट.
1: एग्जैक्टली. और आसपास जो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे.
2: नहीं, मैं सेकंड लाइन में हूँ और मैंने स्लो वो 100 पे लगाया, क्रूज लगाया हुआ है.
1: फिलहाल कैसा रहा मंडे?
2: बहुत ही जबरदस्त.
1: अरे वाह, वेरी नाइस. मंडे जबरदस्त रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. वीक की शुरुआत अच्छी हुई है. इट्स अ न्यू मंथ, न्यू बिगिनिंग्स. फिलहाल विकी, आई एम श्योर गाना तो आपने पहचान ही लिया है बिकॉज ऑलरेडी जो है वो गाना सुना चुके हैं आपसे जो पहले यहाँ पे आए थे बैंकर साहब. सो अब देखते हैं विकी की आवाज में.
2: सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं.

0: को यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम कहीं हमें है यकीन तुम्हें प्यार कह रहे हैं क्या नहीं
1: यार, इतने साल हो गए इन गानों को. Whenever I go back to India from a small town, आप किसी भी छोटी सी दोपहर में जो दुकान खुली रहती है ना उसके बाहर घूमो तो यही गाने बजते हैं आज भी.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्लासिक है ये, क्लासिक है.
0: यार मतलब एक बंदे का ना एक बहुत ही फ्रेश हो जाता है और बहुत पुरानी याद में चला जाता है.
1: आपकी क्या है पुरानी याद इस गाने से?
0: अरे हमारी क्या याद होगी यार, पहली मोहब्बत वाला किसी को मिली
1: यहाँ तो 10वीं 11वीं नहीं मिल पा रही है तो फिर पहली दूसरी तो बहुत पीछे चली गई है.
0: मेरा फर्स्ट लव 3 क्लास में था, जब मैं 3 क्लास.
1: अच्छा ही नहीं मिली आपको, आप रेड फ्लैग हो. फिलहाल विक्की गाया आपने बहुत अच्छा एंड वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑन एयर एंड ड्राइव सेफ. ओके
0: बाय.
1: Well, this is what we do every single evening. We sing, we have fun. We're not looking for singers. We're looking for people jinhe gaane mein maza aata hai. Gaana hai ya na hai? Aapko agar gaana hai, you can send me a WhatsApp 054-309-10625.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is The Big Thrill with Mansi, and this out of the show while you're heading back home in this crazy traffic at the moment. If you're in Shigzad, I'm going to keep you company, and we're playing this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. अब जितनों ने खेला है उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया है कि यार गाड़ी में इतना इजी साउंड करता है, बट बहुत डिफिकल्ट है ये गेम. इफ यू वांट टू ट्राई, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. कॉल करो 800-1062 पर. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 6:07 Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Monday ki sham hai. We are playing the 5-second rule on the phone lines. Shama kahe parwane se pare chala ja. Gana kaun sa hai Shama? Gaya kitna acha hai waise maine.
2: Bahut acha hai. Seriously.
1: Gana kaun sa aapko yaad hai?
2: धर्मेंद्र है उसमें शायद धर्मेंद्र
1: प्यार दीवाना
2: होता है राजेश खन्ना वाला है कोई
1: मुझे नहीं पता कि उसमें धर्मेंद्र है कि राजेश खन्ना है
2: अनफॉर्चुनेटली नहीं राजेश खन्ना है राजेश खन्ना है
1: मुझे ये गाना कुछ कुछ होता है ऐसे याद है सोचो अनुपम खेर गाता है ना रानी मुखर्जी के लिए शमा
2: नहीं नहीं यस यस
1: कैसे हो आप कैसा रहा मंडे
2: बस ठीक वेरी नाइस सो फार सो गुड
1: कितने परवाने हैं आपके आसपास इन दिनों
2: एक ही है
1: शमा क्या करते हो आप
2: आई एम अ होममेकर ऑफ टू किड्स
1: वेरी वेरी नाइस द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक मम्स जो करती है ना
2: आई डू ड्राइविंग पार्ट टाइम लाइक 3 o'clock तक घर पे होती हूँ फिर बस बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती हूँ फ्रॉम 3 till night 8
1: तो शमा हम खेलेंगे 5-second रूल आपके इस शाम के जो ड्राइविंग असाइनमेंट के बीच वेरी वेरी सिंपल मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज आपने 3 चीजें बतानी है फटाफट खटाखट 5 second के अंदर ऑल द वेरी बेस्ट
3: 5 second रूल
4: oh yeah.
1: अच्छा प्यार इश्क परवानों की बात हो गई है 3 ऐसे गाने शमा जिनमें प्यार आता है
2: एक तो आपने बताया प्यार दीवाना होता है
1: और मैंने जो बताया वही आपने बताया टाइम खत्म हो गया फटाफट खेलने की चीज है ये ठीक है 3 ऐसी चीजें जो समोसा बनाते वक्त यूज होती हैं
2: आलू ग्रीन पीस ऑनियन
1: वेरी नाइस देखो मम्मिया ये जवाब जो है 2 सेकंड में देंगी मुझे पता था हेलो शमा आई थिंक शमा की फोन की बैटरी डाउन हो गई है या फिर ये नेटवर्क से गायब हो गई है वट एवर द रीजन इज लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है बट शमा इफ यू स्टिल अराउंड एंड यू वॉन्ट टू प्ले दिस गेम देन गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 यही है 5 second रूल शमा ने शुरुआत अच्छी करी थी बट इनका नेटवर्क इनके साथ नहीं था आप अगर नेटवर्क में हैं गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9 नाउ मानसी राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल टाइम फॉर द फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill. We're playing the 5-second rule. And joining us is Chandresh. How are you, Chandresh?
2: All well. How are you doing today?
1: Good, good, good. See, I binged watched Musafir Cafe. Usme Chandar tha. Yahan Chandresh aa gaye. Aapne dekha show?
2: Abhi shuru kiya hai. We, I think, completed 5 or 6 episodes.
1: Hai 8, sir. तो पूरा ही देख लेते हो. Why did you leave 2 episodes?
2: नहीं, time नहीं मिल पा रहा है. We were traveling, just been back. So whatever little time we got, we started watching. But loved it so far.
1: I love the people जो एक interesting show को बीच में छोड़ देते हैं, थोड़े time बाद देख लेते हैं. That's willpower, which I don't have. So respect, lot of respect.
2: Thank you.
1: कैसा रहा weekend?
2: Weekend बहुत अच्छा था. So के बताया, you know, we had a long trip. We've been back on Friday only back to Dubai.
1: Oh, very nice.
2: So,
1: where did you guys go?
2: We've been to Bali.
1: Oh my God, that's a long flight also. 9 घंटे, 9.5 घंटे की flight है बाली की.
2: Yes, you ask me. Yeah, 9.5 hours.
1: We'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. 3 चीजें बतानी है चंद्रेश 5 second के अंदर.
2: I'll try my best. 5-second rule. Oh yeah.
1: 3 things that are yellow in color and you can eat.
2: Turmeric.
1: ओके बट खत्म हो गया 5 सेकंड फटाफट खेलने की
2: बोलो ना
1: गेम है बोलो ना अच्छा ये ओहो ये तो सुधा और चंदर साथ खेल रहे हैं ये सुधा है कि प्रीति है
2: पूरा नहीं देखा फॉर मी शी इज माय सुधा शी इज माय प्रीति
1: हाय ग्रीन फ्लैग लाइक चंदर चलो दोनों साथ खेल लो 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है
2: हम आपके कौन हम साथ साथ है हम हिंदुस्तानी
1: वेरी नाइस 3 things that you can make out of milk and sugar.
2: Kheer.
3: Ice cream.
1: Bata rahi hu, time khatam ho gaya. Ice cream. Fatafat pigal jayegi ice cream. 3 Bollywood celebrities jinka naam shuru hota hai with the letter M.
2: Madhuri Dixit, Manisha Koirala, Mamta Kulkarni.
1: Very nice. 3 things that you pick from a hotel room.
2: Brush, towel, napkin.
1: Towels? ये तो बाली आप इतने दिन लगा के आए हो तो मतलब साल भर के टावल इकट्ठे हो गए होंगे आपके तीन ऐसी चीजें इफ यू कुड चेंज अबाउट योर वाइफ बदल देते अब आएगा मजा
2: कुछ भी नहीं शी इज परफेक्टली फाइन नो नथिंग आई कैन सी 23 साल में कुछ नहीं बदला तो आप क्या बदलेंगे
1: ओ माय गॉड तालियां फॉर द लव व्हाट्स हर नेम
2: हिमाक्षी
1: क्या कौन से व्रत रखे थे जो 23 इयर्स बाद भी इतने ग्रीन फ्लैग इतने सुलझे हुए टचवुड काला टीका नो नजर बट यू गाइस प्लेड वेल मतलब 2-4 जवाब इधर उधर हुए बट नॉट बैड फॉर द फर्स्ट टाइम
2: थैंक यू सो मच
1: बट सच्ची में यू गाइस पिक्ड अप टॉवल्स
2: No.
1: Yeah, I'm just asking. Probably for my next trip because I thought ki nahin utha sakte. Chalo.
2: Nah, just kidding.
1: Have a great evening, guys. Bye.
2: You too. Take care. Cheers. Bye-bye.
1: Yeah, 5-second rule. Maza bhi aata hai. And it's a fun game to play. Agar aapne khelna, 800-1062 is the number to dial.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill, Mansi. And the only big thing that is trending on socials is Musafir Cafe. Ab, agar aapne show nahi dekha hai and you're into the grey side of love, please watch it. You'll love it. Jinhone dekh liya, I think. हाइपोथेटिकल सवाल थोड़ा कलेश करते हैं कि अगर शादी के रिलेशनशिप के सालों बाद आपका एक्स आपसे मिलना चाहे तो क्या आप उससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या आप अपने पार्टनर को साथ लेके जाएंगे. देयर इज आल्सो अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. डेफिनेटली लेट मी नो 106.2 बिग एफएम. बट इयर्स लेटर प्रोबब्ली समवन यू हैड हिस्ट्री विद रीचेस आउट, तो क्या आप उससे मिलोगे? विल यू रिस्पॉन्ड? यू कैन ऑल्सो गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी द टाइम राइट नाउ 7:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: हौली हौली गिद्दे भी

0: पैसा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: InsuranceMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
8: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
9: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: Still slow moving traffic. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed, abhi bhi aapko around 20 to 22 minutes delay milega. There is patchy traffic if you are Sharjah bound. Heavy traffic though near Fahidi. There's also slow moving traffic if you're going towards Arabian Ranches. Bahut hi slow moving hai. Until Global Village, bahut hi patchy traffic. Also some traffic on the Hesse Street going towards JVC and Discovery se Furjan. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
9: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
11: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
12: ए मामो, सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
13: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
9: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

फिलहाल आज शाम मैंने सोचा थोड़ा सा कलेश कराते हैं, एंड वो कलेशी सवाल इंस्टाग्राम पे है. देयर इज अ पोल व्हिच इज अप ऑन आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम इंस्पायर्ड मुसाफिर कैफे से. अगर आपने शो नहीं देखा, आई विल नॉट गिव यू स्पॉइलर्स, वॉच इट. जिन्होंने देख लिया है उनसे सवाल यह है, इयर्स लेटर अगर आपकी जिंदगी की सुधा वापस आती है तो क्या आप उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. We've got Amal Arshi coming up in just

0: 92.2. The beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
2: Come on.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: InsurersMarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from InsuranceMarket.ae.
0: The Big Thrill on Big 106.2. Brought to you by Dabur Shilajit. Aapki Jeet, Dabur Shilajit. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: Still काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक है मोटर सिटी की तरफ. देयर इज आल्सो हैवी ट्रैफिक इफ यू गोइंग टुवर्ड्स अरेबियन रैंचेस. बहुत ही स्लो मूविंग है. देयर इज पैची ट्रैफिक फ्रॉम फुरजान टू डिस्कवरी. देयर इज सम ट्रैफिक दैट आई सी मरीना से JBR. स्टिल शेख जायद पे आपको 18 से 20 मिनट का डिले मिलेगा एंड शेख मोहम्मद बिन जायद पर भी 20 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट लेट मी नो 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, we're talking about this movie जो आज ही के दिन 2007 में रिलीज हुई थी. मैंने ये मूवी देखी नहीं है एंड बहुत से लोगों ने नहीं देखी. इट वॉज अ मेजर फ्लॉप बट हाइप बहुत थी इस मूवी की 2007 में. अगर आपने ये मूवी देखी है तो मैं जानना चाहूंगी क्यों देखी थी. द म्यूजिक लिटरली आउट शोन द मूवी. वेल लाइक आई सेड, मूवी काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बट द साउंड ट्रैक Still After Years is a hit and then in 2007 was a commercial chart buster. Vishal and Shekhar ka music tha. Bohut sare stars is movie mein the. In fact, this movie was marketed as a sequel to Anubhav Sinha ki Das jo 2005 mein aayi thi and almost same cast thi. Ajay Devgan, Sunil Shetty, Zayed Khan, Diya Mirza. Saath mein Shamita Shetty and Isha Deol. In fact, the film was way ahead of its time because CGI, green screens, animated comic book style transitions isme use kiye gaye the. Kafi experimental tha in Bollywood back in 2007 and jo visual effects the unhe mixed reviews mile the. People also did not like it then box office par, but ओवरऑल वॉज अ मेजर फ्लॉप. मैंने आज तक ये मूवी देखी ही नहीं है, जरूरत भी नहीं करी है देखने की, बट गाने कमाल है. लेट मी सी हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर द मूवी. ये बैकग्राउंड स्कोर था इस मूवी का. अगर आपको याद आ रहा है कि कौन सी मूवी है, सुनील शेट्टी, जैद खान, अजय देवगन, दिया मिर्जा, ईशा देओल एंड साथ में शमिता शेट्टी. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: बिग 106.2.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi. Welcome to the last of the show. We're talking about this movie जो किसी ने देखी नहीं है, but ऐसा मुझे लगा कि नहीं देखी है. कई लोगों ने देखी भी है. आज ही के दिन रिलीज हुई थी. The soundtrack was amazing, massive. Even years later, it's a banger, but box office पे बहुत बुरी तरीके से पिटी थी ये मूवी. कास्ट कमाल थी. It had Sunil Shetty, Ajay Devgan, Shamita Shetty, Zaid Khan, Diya Mirza, Isha Deol. And I was just reading, Aishwarya Rai was the first choice. उन्होंने कुछ सीन शूट भी करे एंड देन शी वॉकड आउट ऑफ द मूवी. Let me see how many of you remember the movie जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपने ये क्यों देखी थी, क्योंकि जो रिव्यूज़ मैंने अभी पढ़े हैं उसके हिसाब से मुझे सच्ची लग रहा है कि क्यों देखी थी आपने. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो अच्छी भी हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, एंड ये तो 100% मिस की है मैंने जानबूझ के. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: स्टिल 37 लो जाएगा अराउंड 34, ह्यूमिडिटी है 62% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: मंडे की शाम में हम बात करें एक ऐसी मूवी की जो 2007 में आज ही के दिन रिलीज हुई थी. जब रिलीज हुई तब भी लोगों ने थिएटर में नहीं देखी थी. इनफैक्ट इसके एक हफ्ते पहले पार्टनर रिलीज हुई थी एंड उसकी वजह से ये मूवी बिल्कुल नहीं चली. ऑफ कोर्स पार्टनर बीइंग अ कल्ट क्लासिक राइट. ऑफ गॉड रौनक रौनक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी डिड यू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर.
3: नो आई डिडंट वॉच इन द थिएटर डेफिनेटली.
2: Thank God.
3: You know,
2: there's certain movies, क्योंकि मैं इतना डर गई हूँ लोगों के you know, opinions उन movies के बारे में सुन के कि मैंने आज तक हिम्मत ही नहीं करी है. एक पहले नंबर पे आती है झूम बराबर झूम. A lot of people have said so many things about the movie. हिम्मत ही नहीं हुई. I love the music. And दूसरी movie ये है जो आज ही के दिन release हुई थी. Right answer क्या है? The movie that I was talking about was
3: Cash.
2: Absolutely correct. जैसे movie ने cash तो कुछ खास कमाया नहीं. But yeah, you were telling me you've seen the movie.
3: Yeah, I've seen the movie. It is okay. It is decent. But yeah, it's not that much. But the music is amazing.
2: But then, what is the movie all about?
3: Morning,
2: why was it so bad?
3: It was about a group. Which was behind a cash in another country.
2: Okay.
3: But how they, you know, loot that cash and how they, the differences grew up in the group, within the group, some shak vag hone lag jata hai, sabko ek dusre ke upar cash, kaun leke jayega, kaun nahi leke jayega, itni planning ke bawajood bhi. So that is the concept and ultimately what happens afterwards, that's a good part but not a good ending, you know, I can say.
2: नहीं क्या होता है एंड में बता दो ना. अब तो इतने साल हो गए जब लगी थी तब लोगों ने नहीं देखी तो हम क्या स्पॉइलर्स देंगे एंड में क्या होता है.
3: I also don't know but मुझे इतना पता है कि एंडिंग अच्छी नहीं थी तो I also vividly remember that scenario. So
2: मैंने तो देखी भी नहीं है
3: मूवी. I don't know.
2: एंडिंग में कैश लेकर कौन जाता है.
3: That's what I'm saying. Ending में मुझे नहीं याद है कि कौन लेके जाता है कैश. मुझे इतना होता है कि वो जो जब यू नो मिक्सअप हो जाता है इतना सब जनों के बीच में. So that was a good laughter part, but after that I don't remember at all.
2: मतलब रौनक ने पूरी नहीं देखी, छोड़ दी बीच में. किसी को पता है कि कैश के एंड में क्या होता है प्लीज हमें जरूर बताना क्योंकि मैंने देखी नहीं है. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रौनक आपको बताएगा बट उसको भी याद नहीं है. बट आई हैव टू से द साउंड ट्रैक वाज अमेजिंग. विशाल एंड शेखर दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. इयर्स लेटर आई कैन स्टिल लिसन टू द एल्बम. इट वाज अमेजिंग. योर फेवरेट गाना फ्रॉम कैश.
3: कैश मेरी आंखों में.
2: यार वो म्यूजिक कितना अच्छा था ना. लाइक वेरी नाइस म्यूजिक.
3: बहुत आई कैची था.
2: बहुत ही अच्छा. बहुत अच्छा शूट भी किया था और काफी सीजीआई एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करी थी 2007 के हिसाब से. बट वो भी काम नहीं आई और अभी तक रौनक भी हमारे काम नहीं आया. इसने बताया नहीं कैश लेकर कौन जाता है. बट लेट्स लिसन टू द टाइटल ट्रैक व्हिच इज अ बैंगर इवन आफ्टर इयर्स. हैव अ ग्रेट इवनिंग रौनक. थैंक यू.
3: So thank you very much.
2: Bye.
3: You too. Bye.

0: सिंग द ओनली सॉन्ग जिसका ओरिजिनल एंड रिक्रिएटेड वर्जन दोनों ही बहुत अच्छे हैं. दे लिटिल डिफरेंट बट फील है, दोनों में फील है. जुबिन नौटियाल की आवाज, मेरी आवाज सुनते हैं आप 5 से 9. ये है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. गुड इवनिंग.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: फिलहाल मंडे को तो वैसे भी एनर्जी कम होती है, बट अगर आपकी 24/7 एनर्जी कम है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, लो फील करना, वीक फील करना इज वेरी वेरी कॉमन बिकॉज स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लो एनर्जी. यू फील लो बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना एंड ऑफ कोर्स योर पावर. अगर आप भी शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, अपने दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. 100% natural Ayurvedic supplements हैं and they'll make you feel stronger and more confident. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Definitely consult your doctor before taking any medicines or pharmaceutical products. But I think this is one way of say staying energetic throughout the day and you know having that confidence. दिन को आप conquer करोगे just like a tiger with डाबर शिलाजीत.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एंड इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से गुड बाय गुड नाइट. आजकल मैं लॉकअप के फिनाले वीक में हूँ, मतलब मैं नहीं, लॉकअप का फिनाले वीक चल रहा है. अब दो टाइप के लोग हैं जो अलायंस देख रहे हैं एंड दूसरे लॉकअप. मैंने अलायंस शुरू किया, आई रियली लाइक इट, बट लॉकअप इज टू मच क्लेश. इट इज सो ड्रामेटिक दैट आई लव इट. एंड अ फिनाले वीक है, वंस इट इज ओवर देन आई विल स्विच टू अलायंस एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग ट्रेटर्स. नाउ यू नो I love watching all this on-screen Kalesh. I am definitely one of the most loyal audiences of reality TV. मुझे बहुत मजा आता है reality shows देखने में. फिलहाल यहाँ से bye bye कहने का time. आपको मजा आया 100% होगा. And यहाँ जितना मजा आ रहा है उससे ज़्यादा मजा Instagram पे आएगा. So say hello to us there. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. I will see you tomorrow. You have a great evening. Leaving you with.

0: खुल्ला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Beat 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song by E.N.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।